0: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछा से सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल?
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का?
4: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, कटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
6: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आदि था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल हेरे थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटी, ये बुढ़ो ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
4: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब भी अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से धान बालियो गांव है रोग ब्याडियो विपद से बचैना सेकजाए गए के थारू गांव में हरी पूजा करती धान बाली में रोग किरा नहीं लगना विश्वास। दौलतपुर घटुआ के झुलुंगे पुल फेर से संचालन में भार अनुसार के पुल में आवत जावत करना निर्माण कंपनी के आग्रह। टीकापुर में फेर से चितुआ के आतंक शुरू दैनिक पशु चौपाए मर्ती स्थानीय नागरिक दरिदियो टीकापुर नगर पालिका में देखपरलग विवाद समाधान के लग जेएनजी युवा उकरण संगे जनप्रतिनिधि संगे छलफल। थारू समुदाय में हरेरी पूजा साउन महीना में करना चलन बा। थारू समुदाय गांवभरिक मनै रकम संकलन करके पूजा सामग्री किन्नाओ देवी देवता है चढ़ना चलन बा। हरेरी के समेत बिहान के गांव के थनुआ में करके पूजा करना चलन रहल बा। हरेरी पूजा में कृष्ण भगवान उस्तक के गौरा पार्वती पांच पांडव भीम लगायत के देवता हुकन के पूजा करना चलन रहल। टीकापुर नगर पालिका पांच नुकलीपुर के गुरुआ फुलराम चौधरी के कहायबा सामूहिक रूप में थनुआ में पूजा कर सकल पांचे गांव भरी किसान उकरण मंत्री से समय धूप ओ दूध पानी वितरण करना चलन बा। गांव कृषक हुकरा वितरण करलाक दूध धूप पानी आपन समेत खेतवा में डरना चलन रहल बा। ऐसे के पूजा करलक धूप असग दूध पानी खेतवा में चढ़ाए करलसे धान में रोग किरा हटना विश्वास समेत रहल। जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 खैरीपुर के गुरुआ देशना डंगौरा चौधरी के कहायबा उसक हरेरी पूजा से थारू समुदाय में एकता लन्ना के साथ ही मेल मिलाप सामाजिक सद्भाव कायम धरना सहयोग करत परम्परागत पूजा से धान उत्पादन में वृद्धि होना विश्वास रहलबा। धान कीरा में समेत धान में कीरा लगना से बचैना उत्पादन वृद्धि होना विश्वास से हरेक वर्ष हरेरी पूजा करना चलन रहल। टीकापुर चार बाघमारा के जोखनलाल चौधरी कहायबा खेती करना शुरू करल संगे हरेरी पूजा करना चलन चलती आयल बा। असिके गांव में रोग प्याडी नहीं लागे हो लगायल धान लगायत के अन्ना बाली में कीरा नहीं लागे कहके पूजा करना चलन रहल। थारू अगुआ जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 के जंग बहादुर चौधरी के कहायबा हरेरी पूजा के दिन हरियर घास कटना नहीं हुईना सक ढिकी जैसन चीज चलना नहीं हुईना मान्यता रलक पूजा के दिन ऐसन क्रियाकलाप अशुभ होना जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 9 के मान बहादुर चौधरी के कहायबा हरेरी पूजा सांस के ओर गांव भर में पुरुष एक ठाव में जमा होके सामूहिक रूप में मंद्रा बजैना नचना पुस्तौ पुस्ता से लेके चलती अलग चलन चलैना गांव मनई के नहीं होके अभी फिर गुरुआ समेत गुरुआ संगे बैठना केशव का समेत बैठना चलन बा। गुरुआ और केशव का से समेत मंद्रक ताल में नचना चलन रहल बा। दौलतपुर घटुआ के झुलुंगे पुल फेर से संचालन में आयल बा। कैलालियो बर्दिया

0: पुस्तक सम्पन्न हुसेकले गर्छ अब पुल पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहल निर्माण कम्पनी के समेत विक्रम बस्नेत के कहाइबा बस्नेत से भविष्यमा यसिन समस्या दोहरीले से प्राविधिक टोली मार्फत डिगो समाधान करना प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करती पुलमा अनावश्यक भीड़ नै करना सर्वसाधारण हुकन केलाक समेत अस्तिके नै करना आग्रह करगिल वा झुलुंगे पुल बनल पाछे बर्दिया राजापुर क्षेत्र हो कैलाली टीकापुर क्षेत्र जोड़ना काम हुईलबा कलसे पुल अवलोकनमा दैनिक भारी संख्यामा आन्तरिक पर्यटक हुक्रा पुक्ति रहल बाटै कैलाली के टीकापुर में सवारी दुर्घटना में एकजान के मौत हुई बा टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित ठुलाकी राजमार्ग में हुईलक सवारी दुर्घटना में पिकअप भ्यान के सहचालक अंदाजी 23 वर्ष के सल्यान के समेत संजीव ओली के मौत हुई बा ठुलाकी राजमार्ग में पूर्व से पश्चिम जैटी करलक ट्रक में वही दिशा ओर से समेत जैटी करलक पिकअप भ्यान पास से ठक्कर हुके वहां के घटना स्थल में मौत हुई प्रहरी से जनाइलबा और व्यक्ति की अवस्था भर सामान्य रहलबा दुर्घटना में परल भे 1501 नंबर के ट्रक को लुम्बिनी प्रदेश 02001605400 नंबर के पिकअप भ्यान हो दोनों गाड़ी के चालक इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के नियंत्रण में रहल इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रकाश दांगी जानकारी दिलबाट मृतक के शव टीकापुर अस्पताल में धरगिल बा खोज खबर मै गरी विश्राम विश्राम पास फिर से सुनतेरबी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्याहन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
4: थाहा पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकी सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
7: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि

0: उन्नाइस वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोश हुनु, मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
2: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बाबै। इलाका प्रशासन कार्यालय से राष्ट्रीय परिचय पत्र दर्ता करना संबंधी सेवा समय अवधि समेत बढ़ाइल बा। कार्यालय से परिचय पत्र दर्ता करना सेवा गराए हुकरण के चाप ढेर लकोर्स। यह सेवा बिहान के 9 बजे से लेके सांझ के 6 बजे सम प्रदान करना इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुर से जनायल बा। इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुर से काली एक सूचना जारी करती राष्ट्रीय परिचय पत्र दर्ता करना संबंधी सेवा और सूचना जारी नहीं हिट समके लाग एक घंटा ठप करके प्रदान करना जानकारी दिल के हो। टिकापुर नगरपालिकामा देगिल विवाद समाधान केला। टिकापुर के जेनजी युवा हुकरण संगे छलफल करलबा। टिकापुरमा सचेत युवा संयोजक विष्णु रोगायाके अध्यक्षतामा हुल कार्यक्रममा पाठक समयमा देगिल राजनीतिक प्रशासनिकको विकास सम्बन्धी विविध विषयमा जनप्रतिनिधि हुकरण संगे जेनजी युवा हुकरण जिज्ञासा धरलबाटै जेनजी युवा विष्णु रोगायासे जेनजी के ओर से 9 वाडा अध्यक्ष हुकरण कार्यक्रममा बोलैलसे फेन कुछ मात्रामा केल आयलो। 8 नम्बर वाडा अध्यक्ष काठमाडौँ जैना के एजेण्डा समेत लैके गैलक बारेमा समेत प्रश्न करल रहे। वार्ड नम्बर 9 के वाडा अध्यक्ष लौटन चौधरी से पालिका चलायमान बनैना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरवा हुके जटिल तस्के बारेमा फे समस्या समाधान हुए कहिके काठमाडौँ गैलक पटोइले बाटै। वार्ड नम्बर 1 के वाडा अध्यक्ष मोहन लोहार विकासे कार्यवाहक नगर प्रमुख अदालतमा विचाराधीन रलक ओर्से लौवा ऐना हाकिम काम लगैना माफे समेत समस्या हुइलक ओर्से यी अवस्थामा कार्यालय प्रमुख के सरवा नियमित नै हो के निवेदन के आधारमा हुइलक ओर्से अपना हुक्र बुझ्न पुगल बटुले बाटै। कार्यपालिका सदस्य दीपक निशानी से पालिकामा करार तथा जालदारी कर्मचारी हुका ढेर रलक ओर्से गुनासो आयल बटोइती कर्मचारी जनप्रतिनिधि समेत धर नैसेकना बटोले बाटै। कार्यपालिका सदस्य मंजू बिकेसे कर्मचारी के कता बा गहना तथ्यांग अपना हुकन कार्यपालिका से नहीं देलक ओ ओएनएम बनाए बेरफे स्थानीय जनशक्ति के प्रयोग नहीं करलक ओर से समस्या आयल बटोले बाटै। टिकापुरमा फेर से चितुवा के आतंक शुरू हुई बा। चितुवा साउन 17 गते रात के टिकापुर नगरपालिका 1 शक्ति नगर 2 नम्बर टोलमा छेगरी मारदेहलबा कलश से 18 गते रात के 3 बजे रात के समेत 3 नंबर टोल में बंगुर खादेहलबा 3 नंबर टोल की फिरिया चौधरी आपन बंगुर चितुआ से खादेहलपा से दुखी हुई बटोले बाटे आगे रात के शक्ति नगर के 2 नंबर टोल में राजकुमारी चौधरी के छेगरी चितुआ से मारदेहल रह लगहक बनुआ रलक ओर से रात के चितुआ ऐटी रलक कैसे के बसना कहना चिंता समेत बढ़ल फूलपाती चौधरी के कहाबा स्थानीय बरघर पंचराम डंगौरा कैलाशेश्वर सामुदायिक बनुआ से मुक्त कमैया बस्ती के बासिंदा हुकरन घास काठी नहीं पाके यहां आईना समय चितुआ से बारम्बार नुकसान करते रलक गुनासो कर ले बाटे बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज मन से समेत बेला बेला में कर्णाली तर्के निकुंज के समेत उपार लंके सामुदायिक बनुआ में बगुआ गैरा हथिया ऐना करल बाटे गलसे चितुआ के विगत वर्ष में फे समेत शक्ति कर्णाली बनुआ में पुस्तक शीतल सामुदायिक बनुआ जनशक्ति सामुदायिक बनुआ टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय लगायत के क्षेत्र में घरपालुआ जनावर मरती रहल बताइलबा सब डिवीजन वन कार्यालय के टीकापुर के वन अधिकृत दिलीप कुमार यादव ई क्षेत्र में बनुआ में जनावर की गतिविधि बढ़ल बटोले बाटे गैल वर्षा फे टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय में निरंतर चितुआ ऐटी रहल पाछे चितुआ है समेत खोबरा में फंसा के निकुंज पुगाइल बटोले बाटे खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
3: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना
1: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ
3: तपसिल
1: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी
3: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी
1: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
3: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
1: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
3: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
4: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
5: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08
6: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त
7: मै नै जाइँ उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु
6: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर ई पत्रिकामा लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तुम्हें अब भी जाए
8: याद गर्मी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
2: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नई हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
2: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। कर्णाली मावि टीकापुर के मां बाल बालिका हुकरण के व्यक्तित्व विकास में नेपाल स्काउट के भूमिका विषय निबन्ध प्रतियोगिता हुई बा। प्रतियोगितामा कक्षा नौ के छात्रा स्वीकृति उपाध्याय ओस्तक प्रथम हुई बाटे कलश कक्षा दस के सुजल भण्डारी दोसरा कक्षा नौ के कल्पना जैसी तेसरा स्थान और कक्षा दस के पवित्र कुमारी साहस सान्त्वना स्थान हासिल कर बाटे। ओस्तकर के कक्षा छ आठ और समेत व्यक्तित्व कला प्रतियोगितामा कक्षा सात में रेजिना बुढ़ा प्रथम कक्षा सात के सरस्वती स्वस्तिका जैसी दोसरो स्थान कक्षा आठ के सृष्टि कठाई तेसरो स्थान और कक्षा छ के साधना मुदभरी से सांत्वना स्थान हासिल कर बाटे। उत्सवकर के कक्षा चार और पांच के चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा पांच के समीक्षा खड़गा प्रथम प्रिय चौधरी द्वितीय अनामिका साउंड तृतीय रोशनी साउंड सांत्वना स्थान हासिल कर बाटे। उत्सवकर कक्षा एक से तीन के सबिना भण्डारी प्रथम अनमोल घरती मगर द्वितीय संगम कठरिया तृतीय सुस्मिता विकास सान्त्वना स्थान हासिल कर बाटे। प्रतियोगितामा स्काउट के विद्यार्थी उग्रकेल सहभागिता जमाएल रहे विजयी विद्यार्थी उक्रण स्टेशनरी सामग्री पुरस्कार वितरण कर गेल रह। उपबजार क्षेत्र के सड़क में छाड़ा गाय गोरू के कारण दुर्घटना के जोखिम बढ़ल पाछे टीकापुर नगर पालिका से छाड़ा पशु नियंत्रण अभियान संचालन करल बा। पालिका के पहल में नगर प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर गौशाला के सहकार्य में बजार क्षेत्र में समेत करीब 100 से ढेर छाड़ा पशु नियंत्रण में लैगेल गौशाला सम समेत पुगा गेलेखो। सड़क में छाड़ा पशु बैठना करलक कारण सवारी साधन में आगमन में समस्या हुईलक के साथ ही दुर्घटना के जोखिम बढ़ती गयलक कहती नगर पालिका से अभियान संचालन कर जनाइल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से धान बालियो गांव है रोग ब्याढ़ी से विपद से जोगैना सेगजाई गई कि थारू गांव में हरेरी पूजा करती धान बाली में रोग किरा नहीं लगना जनविश्वास। दौलतपुर घटवा में झुलुंगे पुल फिर से संचालन में भार अनुसार के पुल में आउट जाउट करना निर्माण कंपनी के आधार। टीकापुर में फिर से चितुआ के आतंक शुरू दैनिक पशु चौपाया मरती स्थानीय नागरिक ट्रस्ट। टीकापुर नगर पालिका में देगिल विवाद समाधान के लाग जेएनजी युवा हुकरण से जनप्रतिनिधि हुकरण संगे छलफल। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब ब्रेक खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुतु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम रहा।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कबू कापी रहेठ कबू पेन्सिल रहेठ कबू झलै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: खाने मन तो कहा तर के जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फिर खान पर्छ
4: तत तो एक्लो कहाँ छस रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाई पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
5: शिविर सञ्चालन हुने स्थान वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म,
5: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म,
5: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
5: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
4: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
6: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
4: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 9845018888, 9845015356 र 9846134434।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुई लगमार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: फुका पिएर इठा कबु पेन सिलेर इठा कबु झलै फटाका आज इठा का कना हो बाबा के ओस्तबाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहराए।
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेंसिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्राली टीकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
2: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
3: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
2: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुई इ गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा की उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848-51-43-26।
5: सूचना
6: कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एमबीबीएस एमडी इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म डाक्टर कृष्ण ऐरी ईशान मेडिकल हल टीकापुर में यही साउन 23 गते चौथो शनिवार का दिन बिरामी चेक जाँच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ।
5: निम्न समस्याहरू:
6: सुगर रोग,
5: गर्भकालीन मधुमेह,
6: महिला को शरीर में अनावश्यक रौं बढ़ने,
5: सुगर रोग का कारण हुने समस्या जस्तै खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, दिन तथा रात में पटक पटक पिसाब लाग्ने, मुख सुक्ने, तिर्खा लाग्ने,
6: थायराइड कम जस्तै थकान लाग्ने, तौल बढ़ने, छाला सुक्खा हुने, कपाल झर्ने, अनुहार फुल्ने, चिसो बढी लाग्ने,
5: थायराइड बढी जस्तै तौल घट्ने, धड्कन बढ्ने, पसिना धेरै आउने, निन्द्रा नलाग्ने, हात कामने, चिचिडापन, आँखा फुलेर बाहिर आउने,
6: कम उमेरमा पनि प्रेसर, मोटोपन, कोलेस्ट्रोल बढ्ने,
5: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ नबढ्ने वा धेरै अग्लो हुने, महिनावारीमा गडबडी र यौन इच्छामा कमी हुने। के तपाईँलाई निम्न मध्येका कुनै समस्या त छैन? छ भने ईशान मेडिकल हलमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9858-41-31-31 र 9860-11-14-00। डाक्टर आउने समय प्रत्येक महिनाको चौथो शनिवार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क स्थान ईशान मेडिकल हल टिकापुर एक कैलाली।
7: याद गर्नुहोस्, जाँच गर्नुपर्ने बिरामी खाली पेटमा आउनु पर्नेछ।

श्री गुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समन्वत समाज के लक्षण आदेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम छोट मीट के सलाह बैठल सकु रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहटना मिशन और संगारी उग्रमी के बैठक के बैठक के साथ देते बाबू रत्नापुर मगर और भाई दीपेन्द्र संगे संगे हमने बाटी अपने हुकन के संगे और अपने हुकन के जहां रह से खेतों में, बारी में, दुकान में, मकान में, काम में, धंधा में, बिजी में, व्यापार में, यात्रा में जहां रह से कार्यक्रम में कहीं सहभागी जनते कर भी कार्यक्रम में आईते कर भी कार्यक्रम में कहीं 091-5-61-255 के लाइन एकदम खुला बा का नाम है दुकान जानकारी करती बाटू तो जहां जे जहां रह से कार्यक्रम में विशेष करके अपन रोजल खोजल सोचल मन परल थारू भाषा के कोई भी गीत चाहिए अपने के सुन्न मान हुई कल से हमन कॉल करिए कहीं मई गीत सुने चाहू गीत के बोल ई हो गीत मन पड़ना के दुठो कारण ई हो और अंतिम एक जन के नाम ले दी कल से हमरे वो गीत अपने है सुनाब तो जहां हुई भी जो ठाव में हुई भी दोपहरिक समय हो अलसी समय है कुछ असम रमाइलो करेगलग अलसी समय है कुछ असम रह रंगीत करेगलग अलसी समय है कुछ असम दूर करेगलग कार्यक्रम में सहभागी जनवी का नाम आप लोग का निवेदन करती कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश कर बैठो रमाइलो गीत से गीत के बाद समय नहीं बाटू डायल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुलेगा।

0: हजुर रमाइलो गीतके पाँच सेकेन्डसे स्वागत छ कार्यक्रममा बाटोमा मिशन और भ्यूगृह हमार संगे संगे बटे अपने जहाँ रही जो ठावे रही कार्यक्रम में सहभागी जनाई कार्यक्रम में आए अपने घर हमार रमाइलो गप रही रमाइलो बातचीत रही और रमाइलो रमाइलो अपने गीत सुना अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल थार भाषा के कोई भी गीत अपने हमें सुना अपने जानकारी कर दो तो अपन मन परल गीत सुने के लगता ही अपने हमन डायल करते कर भी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला रहा तो फटाफट डायल करते कर भी करीब करीब 45 बजे समय यात्रा करते कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता ही कारण में जानकारी करती बारू थारू भाषा के गीत कोई भी मन पर फ्री कल से कोई लाइन में आएगी बारे में लागत नहीं मैं बोल करना चाहूँ। हजूर राम राम।
1: हजूर राम
0: मालू राम जी हो शुरुआत में आई गिली आज तो अपने कैसिन बा मालू राम जी हाल खबर आज अपने के खरौला और कैसिन बा लमकी चूहा और कैसिन बा मौसम भाई हजूर
1: तो अब घाम लागल बाबा
0: बैठल बारी ठक्के कार्यक्रम आये नही आज मालू राम जी कौन गीत सुनाये हमरे
1: आज रात के नींद चुरेलो दिन के भूख चुरेलो हर पल याद में आयो दिल में दिया जमेलो वाला गीत
0: तू बर्दिया के हैंडसम थरिया
1: नहीं रात के नींद चुरेलो दिन के भूख चुरेलो
0: रात रात के नींद चुरेलो कना गीत नहीं
1: हाँ
0: ओके रात के नींद सुरैलो कना गीत हमारे अपने लग जोर आब और ये गीत मन पड़ना के दुई सौ कारण बताई कब तक ये गीत मन पड़त ओके मजा लागत तब कारण से के लिए गीत सुनना मन लागल नहीं ओके गीत सुना एक जन के नाम ली
1: हमारे
0: हजूर हजूर अब एक लग विदा हुई राम राम

हजुर बेपी रमाइलो गीतके पाछे फ्यान्स स्वागत भयो कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नैकन चाहिँ अब फ्यान्स स्वागत गर्न चाहन् जे जहाँ हुई खेतमे बारीमे दोकानमे मकानमे काममे धन्दामे बिजीमे विद्यालयमे यात्रामे जहाँ रहेछ त्यही कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी जनाइदे कार्यक्रममा अब दोकान अर्जी गरम त फटाफट चाहिँ डायल गरी शून्य 91 5 61 255 अथवा 0915612555 लाइन एकदमै खुल्ला बा और अपने के हमारे कार्यक्रम में भी अपने को हमारा दमाइलो गप हुई कोई टेलीफोन लाइन में आल बटे साल में बोल कर हजूर राम राम कोई टेलीफोन लाइन में घंटी बजा से कल बटे वहां के स्वागत करम पक्के थे अपने के कहीं डायल करते कर भी सुनने का 95 61 255 अर्थात 0915612555 लाइन हमारे अपने के लिए खुला कहले बाटी तो कार्यक्रम में चाहिए आईबी कल से अपने को हमारे रमाइलो गफी रमाइलो बातचीत हुई का नाम है तो जानकारी करना चाहम तो डायल करते कर भी सुनने का नाम 95 61 255 के लाइन एकदम ही खुला हुआ विशेष करके अपने रोजल खोजल सोचल मन परल थारू भाषा के कोई भी गीत हुई अपने हो चाहिए हम ये गीत सुनने चाहते कह के कार्यक्रम में सहभागी जनई भी और कार्यक्रम में आईबी का नाम है प्रोग्राम जानकारी करते बारू तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी 0915 61 255 के लाइन एकदम खुला बा कोई टेलीफोन लाइन में आयल रही शायद संपर्क से बाहर चल गए कि लागत महीन अब डायल करते कर भी अठेक ठाउर गीत जोड़ब हमारे गीत के पास समय नहीं बारू डायल करते कर भी 0915 61 255 लाइन खुल बा

0: हजुर बिल्कुलै रमाइलो गीत के पास फ्रेन्ड स्वागत बा कार्यक्रममा भर्खर रेडियो खरल विकल सी हो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज वसिके हमार वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो हामी सुने सक्छ नमै आफ्नो कान जानकारी करते बाटो तो कार्यक्रममा चाहिँ आइविकल से विशेष करके अपन रोजल खोजल सोचल मन परल थार भाषा के गीत चाहिँ सुनेक कार्यक्रम में सहभागी जनैबी का नाम अर्जी करम और विशेष करके कार्यक्रम में चाहिँ हमारे ई गीत सुनम कहीं सोच निकाल से दुई ठो कारण अनिवार्य बताइए कोई दिन फोन लाइन में आते बल करना चाहम हजूर राम राम
1: राम राम हजूर
0: नारायण जी हो कैसे नारायण जी के हाल खबर बिल्कुल मन मरले बारी तबे मारे मैं अपने के बोली से पता पाई नु आज सीताराम माफ कर भी नारायण जी मन मरले बाटे के अब एकदम आवाज झटकार सुनबो एकदम आवाज एकदम और दिन एकदम मलिन मलिन आवाज आई कल से पता पा जीवो का ठेके कहाँ से फोन कर लिया आज ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली खुशी आज हमरे रोजाना हमन गीत सुनई थी नारायण जी अपने हमरे आज अपने ही गीत सुना आप अपने कौन गीत सुन ली
1: सुनना दिन हो ना
0: आज सुनना दिन हो हाँ
1: सुनना दिन हो
0: एकदम एकदम
1: हाँ
0: एकदम एकदम चाहिए अपने किल का है सुनना कबू कबू अपन से सुने ना होगा
1: धोखा देहला वाला
0: मोटरी पुगल कंचनपुर दही बरुआ धोखा देहलो नही
1: हजुर
0: हजुर हमरे गीत जोड़ा गीत कारण बताइए कौन सा करे गीत सुनना चाहती है भाई मैं कहूँ आज मोटरी पुगल वाला धोखा मिल गिल की का समझ लो ना चली खुशी चली खुशी लागल कार्यक्रम में सब आगे जान ली अब केकर नाम ले भी एक जन हम के नाम ली हजर अब एक लग विदा हुई राम राम
1: राम राम
0: वहाँ फोन के लिए नारायण चौधरी जी रमाइलो फिर वहाँ से हमार बातचीत हुई
2: अब हाल सुवर्णपुर बाटू कह के हमन कॉल करने और वहाँ के फरमाइशी गीत बा मोटरी पुगल कंचनपुर दही बरुआ धोखा देहलो ओके हमारे गीत जो आप अपने दिल्ली राज चौधरी और संगीता चौधरी की आवाज में और अपने अपन रोजल खोजल सोचल मन परल थारू भाषा के कोई भी गीत सुनना मन ही कर से कार्यक्रम में सहभागी जनेगी का नाम अर्जी करम कहेगी अपने को और हमार रमाइलो गीत सुनेना हो तब मारे गीत अपने सुनाई भी कल से हमारे गीत अपने सुनेबी तो हम कॉल करे पाना था 99551 के लाइन एकदम खुला बात वो लाइन मैं आईबी और कह भी मैं ई गीत सुने चाहूँ गीत के बोल बताइबी स्पष्ट रूप में सेक भी कल से फिल्म और एल्बम के नाम से बता देबी और नाइजन भी कल से कोई बात नहीं हो गीत के बोल सही एकदम क्लियर तरीका से एकदम मजा के बता देबी कल से हमारे गीत अपने जरूर पे सुना तो अति पर एक ठाकुर गीत जोड़ी अपने को निकला मोटरी पुगा पूरा दही बड़ा धोखा देख लो वकर पास समय आईने बटू

हजुर मजा मजा गीत सुनते सुनते अठीबारे के खेती व्यापारिक विश्राम लेना बेला हो गिल बात तब मारे अपने चाहिए हमारे कार्यक्रम में अपन रोजल खोजल सोशल मन परल गीत सुने के लग ऐटे कर भी और कार्यक्रम में सहभागी जन ऐटे कर भी सुनने का नबे 5612655 के लाइन खोले बा तस्तम के लिए एक के खेती व्यापारिक विश्राम विश्राम के पास से मैं ऐने बातू डायल करते कर भी सुन्ने का नबे 5612655 तस्तम के लग सात कमर्शियल ब्रेक अपने के लगे

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाती ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बातिन ये बुरह ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
5: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको बेवरा संबंधित सबै का लागि जानकारी गराइन्छ।
4: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ का शैक्षिक कार्यक्रमहरू
5: बीबीए र बीबीएस, ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी, फाइनान्स र मार्केटिङ।
4: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
5: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड, ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स।
4: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
5: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए, ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, डेभलपमेन्ट स्टडीज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स।
4: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे, कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
5: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
4: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको,
5: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने,
4: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने,
5: आईसीटी, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने,
4: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाईफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
5: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने,
4: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
5: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
4: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टीकापुर कैलाली।
6: त्यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
7: तपाईँ एक्लो कहाँ छस् र यार, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
6: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
7: अनि सुधार घिरामा बसेको बेला कसको पो कमाई हुन्छ त, जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाई छ त, यो कमाई पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
6: ओहो तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसके जस्तै यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
8: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
9: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो, पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल।
10: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु, मिल्बो मिल्बो नि करत, का कैन हो का
9: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्टफे पटानी हुइन गुङ्गुवा बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता उल्लेख मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरगी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई दवाई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046774417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीत 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सम्र पात्र और नेपाली पात्र में फिर सुनती रहलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। कैलाली सामुदायिक गुनामा वर्षिनी हजारों वृक्षिया लगेती तर लगेलग बिरुवा बची नाफे सामुदायिक गुनाहा चुनौती लिएर यति राजमार्ग के दुर्गौली कन्चरपुर सड़क खंड में आवत जावत कठिन। टीकापुर शिक्षा शाखा शिक्षक डायरी वितरण करक पश्चात विद्यालय में शिक्षक डायरी की उपयोगिता और प्रभावकारिता बढ़ती डायरी के शिक्षकों को व्यस्त बनाईती। ओसुनसरी ओसिराहा गोली लागी मृत्यु हुई परिवार राहत देना सरकार की निर्णय। वर्षा के समय में कैलाली के सामुदायिक वन में वर्षिनी बनवा में वृक्षारोपण करना कलवा यही वर्ष फे यहां के सामुदायिक वन में कोनो फे वृक्षारोपण कलशे फे कोई वृक्षारोपण करना तैयारी में जुटलवा जनशक्ति सामुदायिक वनवा के अध्यक्ष दीर्घ बहादुर तिरुवा बुटिल जनशक्ति सामुदायिक के बनवा जसिन खुटेना भुराखानी सामुदायिक बनवा फे यह वर्ष धेड़ जसिन जात के करीब 1000 बिरुवा लगलवा खुटेना भुराखानी सामुदायिक बनवा में उपभोक्ता समूह के सचिव चंद्रकला धामी बुटिल बाटी शीतल सामुदायिक बनवा केफे खयर सीसम अर्जुन अम्बा सीताफल लगायत 5 जात के 900 बिरुवा लगलवा सामुदायिक बनवा में वर्षिनी हजारों बिरुवा लगेना कलशेफे वहां उग्र जोगेनाफे ध्यौर चुनौती रह कोनो बिरुवा सुकिदैन कोही बनमा से जनावर तथा छाड़ा पशु चौपाए खाइन व कोही घास के कटना करल कारण समुदाय के बनुआ न्यून मात्रा में केलिक अलग अलग बिरुवा बचेना सफल हुईवा शीतल सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष कर्णबहादुर बुढ़ा बुटिल शक्ति कर्णाली सामुदायिक बनुआ के उपभोक्ता समूह फिर अब वृक्षारोपण के तैयारी करती रहा सामुदायिक बनुआ के बिरुवा लगातार खाडल खनके क्रम जारी बा बिरुवा लगले से फिर बचेना समस्या होना कलक कारण कम मात्रा में बिरुवा बस्ना कलक बुटिल शक्ति कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष जितराम चौधरी बुटिल टीकापुर वनवा संरक्षण समिति के फे वनवा में वृक्षारोपण करना तैयारी करती रहा अब वर्षा थुरी रह जमीन में फे जमा हुलक कारण बिरुवा लगेना नई सिक्लक पानी कम हुईलगत वृक्षारोपण करना तैयारी हुईटी रहल टीकापुर बनुआ संरक्षण समिति के अध्यक्ष नयन सिंह ठकुल्ला बुटिलवा सामुदायिक बनुआ के वर्षिनी हजारों बिरुवा लगने से भी महाउक्र बचैना मुख्य चुनौती देखल कारण सामुदायिक बनुआ के बिरुवा लगना के नहीं हो कि वहाउक्र बचैना तर्फ फे ध्यान देपना देख गिलवा। टीकापुर ड्रेस करसम रगत के अभाव हुई लागल बा आजकल रगत के माग बढ़ियो आपूर्ति कम हुई कारण रगत पुआई सिक्ना समस्या हुई रहल बा आजकल दैनिक 15 पिंच से ढेर बढ़ी रगत खपत हुई रहो आजकल एक दिन 32 पिंच समय रगत खपत हुईलक नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त संचार फाटके प्राविधिक प्रभु राज न्योपाने जानकारी दिलवा रगत के माग बढ़ी हुई रहल पुगिना धो धो हुई रहल रक्तदान करके सहयोग करना समेत रेड क्रस अपील करती रहल प्राविधिक न्योपाने बुटीलवा समय अनुसार फरक फरक रक्त समूह के रगत अभाव हुई कलक आजकल बी पोजिटिव रगत के अभाव बढ़ी देखल फिर न्योपाने बुटीलवा निर्माणधीन सेती राजमार्ग के दक्षिणी खण्ड दुर्गौली कञ्चनपुर सड़क में यात्री को आवत जावत करना समेत कठिन हुआ निर्माण कंपनी के सड़क के दाएं बाएं किनार उठेलक सड़क में माटी पटानी करके छोड़लक देखलक वर्षा के पानी माटी फसके हिड़ना समस्या हुई लगल बा बस्ती के बीच में रहा गरीब 1 किलोमीटर सड़क पूरे बिगड़ल बा यही जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 और 4 जोशीपुर गांवपालिका 5 के मनेनहुकन के टीकापुरैना मुख्य सड़क हो सड़क हिलामे हुलवा छ मनेन के सड़क के किनार न्यागापुरला को वहांक्र लड़के हुलवाट जानकी 4 कंचनपुर के पशुराम महतो डगर निंगना हुलक समस्या हो अपना ठोके घाइते हुलक बुटिल माटी पटानी मजा हुल से बेला रिक्शा चढ़ना विद्यालय जेना बाल बालिका के रिक्शा चलना नई सिक्न हुई संध्या के बिहान के साइक में लेह पलक पानी आइल बोके लजाइ करल कंचनपुर के आसमानी चौधरी बुटिलवाटी और स्थानीय कमला विष्ट सड़क के कारण कैयों जहान खैलक डगर बंद हुल को छोट बाल बालिका के विद्यालय जैना बंद कठिन हुल बुटिलवाटी स्थानीय रामेश्वर रेग्मी 30 महीना से दुख पैटी रह बुटिलवाट और स्थानीय पार्वती कठरिया निर्माण कंपनी के सड़क किनार थुप्रलक माटी ग्राबेल के लिए डारके हुलसेफे मोटरसाइकिल साइकिल पैदल न्यागसेकना बुटेलोबाट 31 करोड़ रूपियाँ लागतमा 23 महिना भित्र 10 किलोमिटर सड़क बनिना ठेक्कारी सत्यौती कन्सन्टेक्सन के सम्झौता अवधि 2083 वैशाखमा ओरैलक सेती राजमार्ग दर्शिन खण्डकी सूचना अधिकारी इन्जिनियर केशव दत्त मिश्र बुटेलोबाट
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-72-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
5: के तपाईलाई थाहा छ
6: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
5: हो र
6: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
5: अनि
6: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
5: के छ त विकल्प
6: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
5: विस्तारै गर्दा हुँदैन
6: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
5: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
6: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
0: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा

0: को शिक्षकों को उनके अपन पेश प्रति अभिन बढ़ी जिम्मेवार बनीना शिक्षक गुणस्तर बनीना सहयोगी बन लगा पास में शिक्षक अपना शिक्षण करना विषय वस्तु के पूर्व तैयारी करना हो शिक्षण के क्रम में अपना अलग अलग बात रिपोर्ट करना शिक्षक डायरी के प्रयोग करती रह कर्णाली मावी सत्य के प्रधानाध्यापक खुमानंद ओली बोटिल शिक्षक डायरी के शिक्षक हुकन अत्यावधिक करती रहो पुस्तक संघ के संबंध अभिन प्रघाट बनेला कुहा बोटिल अस्तंकर के मुक्त कमई आधार विद्यालय के टीकापुर प्रधानाध्यापक टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा डायरी वितरण करके मजा काम कलक बोटिल शिक्षक शिक्षण के क्रम में नया बात सीखती जैना हो ओह बा डायरी में रिपोर्ट करती जैना भिलक शिक्षक हुकन हाफ छुट्टी के बेला फे योजना निर्माण म लगती रह देखलक शिक्षक म कुछ परिवर्तन ऐना के विश्वास लगलक बोटिल शिक्षक डायरी शिक्षक हुकन के लायक एक सहयोगी बंटी गई बा डायरी में शिक्षक हुकन शिक्षण करलक कठिनाई नया विषय वस्तु को विषय वस्तु की रिपोर्ट करना हो थप योजना सहित मनेना बानी शिक्षक को नाभिन बढ़ी जागरूक को सक्रिय बने सरकार सुनसरी ओसीरामा गोली लाकी मृत्यु हिलक परिवार राहत तथा क्षतिपूर्ति दिना निर्णय कलबा आज बैठक मंत्री परिषद बैठक के सुनसरी घटना में प्रदर्शन के क्रम मृत्यु हुना हो घाइते हुकन क्षतिपूर्ति राहत हो उपचार के व्यवस्था करना निर्णय कलक शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल बोटिल घटना में सुनसरी के तीन ओसीरामा एक करके चार जना की मृत्यु हुआ सरकार के लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद्म एंकी उकाय ब्याह नियुक्त कर्णा विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के रिक्त रलक अध्यक्ष पद में प्रधानाध्यापक डाक्टर खड़क बहादुर केसिंह नियुक्ति कर्णा हो सचिव पद में प्रधानाध्यापक डाक्टर रोजी श्रेष्ठ नियुक्ति निर्णय कल प्रवक्ता पोखरेल जानकारी दिलाट वस्त बैठक में तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत कर्णा बाल बालिका के संबंधी पहिलो संशोधन विधेयक 2081 संघीय संसद समक्ष पेश करना पशु वध सालाव मासुचाच एन 2055 चरणबद्ध रूप में नेपाल राज्यभर लागू करना निर्णय कलबाट नेपाल इंटरमोडल लगायत यातायात विकास समिति गठन आदि 2054 खारिज करना नेपाल इंटरमोडल लगायत के यातायात विकास समिति नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कंपनी लिमिटेड संघ गबना स्वीकृति देना निर्णय फे आज के मंत्री परिषद बैठक करलबाट खोज खबर में फिर से विश्राम विश्राम पाछ फिर से विश्राम तिर विश्राम उदाय रेडियो टीका पुरा एफएम
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहिना हो का
1: मिस्तरान बर्जन उकन घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैल बाट अल्युमिनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्युमिनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
4: मिलन अल्युमिनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में
6: भदौ 6 गते पहिलो शनिवार का दिन आउने भएकाले
5: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
6: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
5: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली संपर्क नंबर 9868800008 र 9825677772
7: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
6: ग्रीष्म टेरसमा

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे घोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अदि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाट अस्तरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छेकले कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकर्छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
5: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार मरहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: घर त जेनटेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भार।
1: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयके अनुरोध।
3: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हौ क्रे, सड़क के किनारमै पशु चौपाया नै बाँधेबी, सड़क किनारमै मल वस्तु नै कुरा देबी, साथे सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधके ढुंगा बालुवा गिट्टी मल कुराके दुर्घटना हुइले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्ना बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर।

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: था। का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में। रत गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
5: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
4: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
5: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
4: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98688-0008 र 98-25-63-77-72। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 द्वारा वडावासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
6: वडा नम्बर 1 मा कुनै प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वडा कार्यमा अनिवार्य व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गरौं। पशु चौपाया छाडन छोरी र सड़क पेटी छेउछाउमा नबाधौं। सार्वजनिक स्थानमा माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री जथाभावी नराखौं। खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसावट नगरौं। ढल वा सड़क मिचेर व्यवसाय नगरौं। घर वा पसलबाट निस्किएको फोहोर मैला जथाभावी नफालौं।
4: एक घर एक बिरुवा रोपौं। सबै प्रकारका करहरू समयमा तिरी नागरिकको दायित्व पूरा गरौं। टिकापुर नगरपालिका हाम्रो हो, यसलाई सफा सुन्दर बनाउन आफ्नो ठाउँबाट सबै लागौं। हाम्रा बालबालिकाहरू लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसिरहेका छन्, त्यस विषयमा अभिभावकहरू सचेत बनाऊ। यदि वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुझाव र गुनासो भएमा वडा कार्यालय को फोन नम्बर 091-560-877 वा वडा अध्यक्षको फोन नम्बर 98-4-484-40-598 मा सम्पर्क गरौं।
6: टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय टिकापुर कैलाली।
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 megahertz.

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।